0: कोई नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार, आकाशवाणी दिल्ली, 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। सुबह के 5:54 और 6 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए आप जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विवरण। अब से कुछ ही देर में 6 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 6:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी नुपुर। सात बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे निखिल कुमार। 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR प्रोग्राम में नुपुर आपके साथ होंगे। 9 बजे समय रहेगा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने निखिल कुमार के साथ। 10 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे।
1: 103 MHz News, music and entertainment. FM 103 MHz. Good morning, dear listeners. This is Akashvani Kohima, FM Tragopan at 103 MHz. And we are going to start the first half of our transmission for FM Tragopan. And before we do that, here is the thought of the day. It goes like this. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Once again, I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. This is an inspirational quote by Mahatma Gandhi and the thought of the day as well.

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में

0: कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
5: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
6: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
5: बिटवीन आवर टू नेशंस एंड रिमेन्स अ लिविंग ब्रिज।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है।
7: I
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
6: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौताओं को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीजफायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री

प्रोग्राम के दूसरा गेट टाइगर जिंदा है फिल्मत विशाल दातलानी और नेहा बसिन लगा वास्ते हुनुले प्रोग्राम मते इबार दूसरा गेट हुनिबो तुम्हारी सुलू फिल्म की गेट गायसे गुरु रांधवा।

Hate story for flame out apna luki Himesh Reshamia Aroneha Katkar laga vastu hunile hunida ga sabilak disragi ta kona baja gote arubi ekta duita messages loi diase Durgesh Naganpuri aru family bra aji fujirdibi hunida ga sabilak karune good morning laga shairi likhi gina pathai ase aayi hai nayi subha wo roshni leke jaise nayi jos ki nayi kiran chamke vishwas ki lao dil mein sada jala ke rakhna dega andhero mein rasta diya banke good morning aapke pasandita gaane lagatar fm track upon 113 megahertz par koi gina likhi gina pathai ase दुर्गेश जी एंड फैमिली सही मायनों में आप और आपके परिवार एफएम का बहुत बहुत बड़ा वाला फैन हूँ जो आपकी एसएमएस से दिख पा रहा है और इसके लिए मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया और आज सुबह भी प्रोग्राम में आके शामिल होके इतना अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज के आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऐसे ही आपका जोड़ी बनाए रखिए और रोज़ हर रोज़ आके प्रोग्राम में शामिल होके लिख के बेचते रहना और दूसरा मैसेज लिखी गिना पठाई से निमाडी बॉय और निमाडी गर्ल आरो तार दुजन पर भी गुड मॉर्निंग विश लिखी गिना पठाई से गाना भाल भाल बजाई दिया करो ने थैंक यू कोई गिना एक्नॉलेज करी गिना लिखी गिना पठाई से निमाडी बॉय एंड निमाडी गर्ल अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू द बोथ ऑफ यू बिसी बिसी खुशी से आज भी आई गिना प्रोग्राम ते शामिल हुई से और खाली ट्यून इन कुरा हेन होई गिना लिखी गिना भी पठाई दिसे दांगोरुला खुशी जनाई दिया से सुनीता बसुमतारी बका जान प्राभी लिखी कि पठाई आसे और तार इतना समय ड्यूटी दे आसे और साथ साथ गाना खान भी वाओ आसे दे শুনি কিনা এনজয় কৰি আছে এনেকৈহে বজাই থাকিবি কৈ আছে সুনীতা সদায় দিন মই কৈ থাকে আপোনাৰ খান যিমান বিজি হৈ কিনা থাকিলিবি আপোনাৰ খান কিমটি সময় অলপমান হৈলিবি ওলাই কিনা খালি টিউন ইন কৰাহেন হৈ কিনা একটা দুইটা লাইনছ হৈলিবি লিখি কিনা পঠাই আৰু খালি গুড মৰ্ণিং উইচ বি বেছি ডাঙৰ আছে আজি বি আপোনাৰ আহি কিনা ডিউটি সময়টো বি প্ৰগ্ৰামতে জোৰা নিমিত্তে খুচি জনাই দি আছে তো শুনিব লাভ য়াত্ৰী ফিল্ম কি গীত গাই আছে আছিছ কৌৰ জুবিন নটিয়াল আৰু বাদশাহ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची बाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से लेकर आई हूँ मैं आपका अपना प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ खास विषय जिससे रिलेटेड सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारे एक एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज का क्या विषय है बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, आज के समय में ना इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस हो या होम इंश्योरेंस, कार, बाइक या कोई भी व्हीकल जो आपके पास है उसका इंश्योरेंस लेना मस्ट हो गया है। और तो और आजकल लोग जो मोबाइल फोन्स है ना उनका भी इंश्योरेंस कराने लगे हैं, है ना। लेकिन सच बात ये है कि बहुत से लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन उसकी शर्तें नहीं समझते, जिसकी वजह से फ्यूचर में उन्हें काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। और कई बार वो केवल एजेंट की बातों को सुनकर ही, उनकी बातों पर भरोसा करके ही पॉलिसी ले लेते हैं और फिर परेशानी होती है। कुल मिलाकर या तो क्लेम नहीं मिलता या क्लेम लेने में समस्या होती है। तो इन्हीं सारे लीगल सॉल्यूशंस के लिए, इन सारी समस्याओं के जवाब के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट एडवोकेट श्री संजय कुमार गिरोत्रा, जो इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हैं और आज आपकी इंश्योरेंस रिलेटेड समस्याओं का लीगल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम आपका यहाँ बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
0: क्या बात है सर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये बताने के लिए कि भाई जो भी सवाल आपके हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है रेनबो हेल्पलाइन। और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-234-2108 और 011-234-2108।

0: जी हाँ दोस्तों, कल हो ना हो लेकिन यदि कल को आप सही ढंग से जीना चाहते हैं, कल तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे इंश्योरेंस से गुजरना पड़ता है। कई बार आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, या अपने व्हीकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, मोटर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। और यदि आप किसी वजह से क्लेम नहीं ले पाते, या उससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है लॉ एक्सपर्ट के पास, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको बातें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में हम कर रहे हैं इसी विषय पर बात। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट श्री संजय कुमार गिरोत्रा, जो इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हैं, और आपकी समस्याओं का निपटान करने के लिए ही आज हमने उनको यहाँ पर इन्वाइट किया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि जो इंश्योरेंस होती है वो लेना क्यों ज़रूरी है, और किन बातों का ख्याल पॉलिसी लेने वाले को ध्यान में रखना चाहिए कि वो इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान में रखें।
1: मैडम, आपने बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछी है। देखिए, इंश्योरेंस लेने का मेन पर्पस है आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करना, ठीक है। ज़िंदगी में हमारी कई तरह के रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, फॉर एग्जांपल डेथ हो जाना किसी की, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाना
0: जी,
1: प्रॉपर्टी में आग लग जाना
0: जी,
1: हमारा मोटर व्हीकल जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनका एक्सीडेंट हो जाना, तो इन सब की प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म है जो इंश्योरेंस है
0: जी,
1: ठीक है। और इंश्योरेंस जो है, पहली चीज, एक फैमिली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर एक फैमिली में अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो जाती है, तो अगर इंश्योरेंस होगा तो उसमें पढ़ाई भी कंटिन्यू हो सकती है, घर का खर्चा भी कंटिन्यू हो सकता है, और उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आज के ज़माने में मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं कि उनको बियर करना आसान नहीं
0: है। बिल्कुल,
1: उनके लाखों का खर्चा होता है आपका आईसीयू का, और हम लोग लाइफ लाइन डिजीजेस भी हैं आजकल
0: जी जी जी।
1: इस कारण इंश्योरेंस का, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे आए तो हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। इसके अलावा हम लोग इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टीज बनाते हैं और हमको इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि उन प्रॉपर्टीज का
0: इंश्योरेंस कराना है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जब कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, इवन हमारे घर में जो कीमती सामान पड़ा होता है, हम सामान इतना लाखों रुपए का लाते हैं लेकिन उसको इंश्योर नहीं कराते, हमको नहीं पता होता हमारा थेफ्ट का भी इंश्योरेंस होता है
0: जी जी।
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अवेयरनेस इसके बारे में बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, मोटर हमारे पास सभी लोग आजकल, आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो व्हीकल्स के बेस पे चलती है। हमारे पास जो कार स्कूटर वगैरह हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनका भी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। कुछ पार्ट उसका कंपलसरी होता है, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो तो एज पर लॉ ही कंपलसरी है
0: जी जी जी।
1: ठीक है, इंश्योरेंस मेनली वॉलंटरी होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, हमारा प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, दिस इज वॉलंटरी। लेकिन कुछ इंश्योरेंस लॉ हमको कंपेल करता है कि आपको करवाना ही है, जैसे मैंने आपको बताया एक मोटर व्हीकल का। इसके अलावा जो लोग एम्प्लॉयज हैं कहीं पर, उनका जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कराया जाता है, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, वो भी कंपल्सन होता है लॉ में
0: जी।
1: सो ये हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस और उसका इंश्योरेंस। देखिए, बेसिकली सच कहूँ तो एक इंटेंजिबल एसेट है
0: जी,
1: और इट इज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल।
0: बिल्कुल, आप कह सकते हैं जी।
1: और एक इंसान के फाइनेंशियल क्राइसिस आने पे उसके उसके फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे ठीक होंगे, ये डिपेंड करेगा उसकी अवेयरनेस पे, उसने कितना अवेयर होकर इंश्योरेंस कराया है
0: जी।
1: अब आपने पूछा कि इंश्योरेंस कराते टाइम क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है
0: जी।
1: देखिए, मैं एज ए लॉयर, हम लोग कोर्ट में रोज केसेस देखते हैं जहां पर मैक्सिमम क्लेम इस कारण आते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमने क्या करवाया है। एक ये अजीब सा लगेगा आप लोग, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि आज के बिजी शेड्यूल में हम लोग जब पॉलिसी कराते हैं तो प्रपोजल फॉर्म अगर मान लीजिए किसी ने हमको दे दिया, हम उसको साइन कर देते हैं, हम ये भी नहीं देखते उसके अंदर लिखा क्या
0: लिखा क्या है।
1: डिस्पाइट कि हम वी आर वेरी ऑल एज वेरी एजुकेटेड, स्टिल एक गुड फेथ पे भी चलता है सब कुछ। इसके अलावा आजकल लोग ऑनलाइन पॉलिसीज लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इवन आप ऑनलाइन में भी देखेंगे तो ऑनलाइन पे हम लोग नीचे टिक टिक टिक करते जाते हैं, और उसमें आता है नीचे कि आप कंडीशंस पढ़िए, जो कंडीशंस दो पेज की होती हैं हम उनको अवॉइड
0: कर देते हैं।
1: लेकिन मैडम, जब ये केसेस कोर्ट में पहुंचते हैं या भगवान ना करे किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, तब इस चीज का इफेक्ट पता चलता है, रियल इफेक्ट
0: जी।
1: सो इंश्योरेंस लेते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आप कभी भी कोई भी प्रपोजल फॉर्म भरें, चाहे वो मैनुअल भरें या ऑनलाइन भरें, उसको अच्छे से देख के भरें। और इसके लिए मैं ये कहूँगा, आजकल आज के ज़माने में देखा ये गया है, हम लोगों का सबका बिजी शेड्यूल है, हम लोग आमतौर पर अपनी पॉलिसी भी लास्ट मोमेंट पर लेते हैं, और लास्ट मोमेंट पर पहुँचने का नुकसान क्या होता है कि हम लोग उस टाइम जल्दी जल्दी में काम करते हैं और वो काम ठीक से हो नहीं पाता।
0: जी,
1: तो अच्छा होगा कि हम हर चीज़ का, इन चीज़ को प्रॉपर इम्पोर्टेंस दें। और पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, प्रपोजल फॉर्म ध्यान से
0: पढ़ें,
1: ये देखें कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं क्या वो आपके नीड के अकॉर्डिंगली है, या ऐसा तो नहीं कि आपने एजेंट ने इन्फोर्स कर दिया अपने पर्पज से तो आप ले रहे हैं। नो, आइडेंटिफाई योर नीड्स। अगर इसके बारे में आप अवेयरनेस जाना चाहते हैं तो आज के टाइम में देखिए, इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारे टूल्स हैं, ये आपके ऊपर है आप कितने उन टूल को यूज़ करते हैं।
0: जी,
1: इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, उनको यूज़ कीजिए। आपके नीड सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी नीड्स पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। आप कभी भी ऐसा इंश्योरेंस मत लीजिए कि आप उसको कल को भर ना पाएं, जो एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। और कभी भी, और इसके अलावा आपके ये पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर क्या इंक्लूड है, क्या जो

0: एक्सक्लूड क्या हो रहा है.
1: ओके,
0: एक्सक्लूड जो चीजें इंक्लूड नहीं है. फॉर एग्जांपल आपकी ऑलरेडी जो डिजीजेस होती हैं
1: जी,
0: उसको डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: ओके,
0: देखिए उनको डिक्लेयर ना करना इट अमाउंट्स टू फ्रॉड
1: जी.
0: इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ
1: जी.
0: कंपनी आप पे विश्वास करती है कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं.
1: अच्छा, यदि कोई ऐसा नहीं करता, जैसे आपने बताया प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस जो है वो पहले से बतानी चाहिए, यदि कोई पॉलिसी लेते वक्त उसे डिस्क्लोज नहीं करता तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
0: मैं इसके अंदर आता हूँ. ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है बाय आवर कोर्ट्स ऑल्सो
1: जी.
0: मैं आपको इसमें इवन एक केस रेफर करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में एक मुथुलाल नायक के केस में ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई इंसान फ्रॉडुलेंटली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ये केस LIC के अगेंस्ट था.
1: ओके,
0: फ्रॉडुलेंटली LIC पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उसके अंदर फ्रॉडुलेंटली फॉर एग्जाम्पल कैंसर किसी को हुआ और उसने इसलिए पॉलिसी करा ली कि फटाफट मुझे पैसे मिल जाए उसके लिए. सो आप बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, आप अपने आप को अननेसेसरी एनरिच करना चाह रहे हैं. तो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इस जैसे मैंने इस केस में ही बताया, ये एस्टेब्लिश किया गया कि अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आपको कोई भी क्लेम पेबल नहीं होगा. सो आपको बहुत केयरफुल रहना कि देखिए आप अगर अपनी कोई बीमारी बता देते हैं तो उसका रिजल्ट शायद ये हो सकता है कि आपका शायद थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाए
1: जी.
0: लेकिन यू बी रिलैक्स्ड, आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी फैमिली, जिस चीज के लिए आप करा रहे हैं. एक इंसान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए करा ले गया
1: जी.
0: उसके बाद उसके फैमिली को तो वो चीज मिली नहीं, तो क्या पर्पज उसका सर हुआ? उसका पैसा भी खराब गया और उनका इतना समय भी खराब गया और अल्टीमेटली फैमिली को इतनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी
1: जी. तो आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस मैटर्स की. यदि आपका भी कोई सवाल है, अब जैसे सर ने बताया कि पॉलिसी लेते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है, अक्सर आप पेपर्स नहीं पढ़ते, क्या शर्तें हैं, क्या टर्म्स हैं वो नहीं पढ़ते, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, और साथ साथ किन बीमारियों से आप पहले से ग्रसित हैं इंश्योरेंस लेने से पहले, वो भी आपको पॉलिसी लेते वक्त जो एजेंट है उनको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, वरना केस उल्टा पड़ सकता है. और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे ऑडियंस के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में सवालों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए. तो हमारा जो फोन नंबर है वो बहुत ही आसान है, हमेशा की तरह आप जानते हैं, 0112342 1080 और 0112342 1084. यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070.

0: एक बार फिर से स्वागत सभी लिसनर्स का. आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर्स की. यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है. हेलो,
1: नमस्कार सर.
0: सर आपका नाम बताइए और कहाँ
1: से बोल रहे हैं. अरुण अग्रवाल बोल रहा हूँ, रोहिणी से.
0: जी आपका सवाल पूछिए.
1: मेरा सर से सवाल है. नमस्कार सर.
2: नमस्कार जी.
1: सर मेरा सवाल ये है, मैं जैसे 58 इयर्स का हूँ. आपने मुझे अभी बताया कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते टाइम में हमें सारी बीमारियां बतानी है और उसका एक जो है ऑनेस्ट डिस्क्लोजर करना है. तो बड़ी बीमारियां जैसे आपने कैंसर वगैरह बताया, स्पाइन, बट बीमारी की मैं डेफिनेशन नहीं समझ पाया कि क्या मेरे को अगर मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को शुगर है, ये तो हर किसी को ही है, या मेरे को टेंशन है, कुछ भी है, तो मुझे कहाँ बताना है, क्या बताना है, क्या कौन सी बीमारी ऐसी है जिसको आप कहते हो कि ये तो बतानी ही बतानी है और ये अगर नहीं भी बताएंगे तो चलेगा.
2: अरुण जी आपने बहुत,
1: मैं हूँ तो शुगर और या जैसे मेरी हड्डियाँ दुखती हैं टाइप का, ये
0: ठीक है अरुण जी. वो जी जी सर बता रहे हैं, होल्ड रखिए आप.
2: अरुण जी देखिए आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है. अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा क्योंकि इससे और भी अवेयरनेस होगी लोगों को. देखिए जैसे आपने, हमने अभी डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर के बारे में या डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है. देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मुझे ये मालूम है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मुझे उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. और देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लान्स हैं, इंश्योरेंस प्लान्स, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है लेकिन डिस्क्लोज़र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और डिस्क्लोज़र होने की वजह से हमारे को कोई भी कोई क्लेम में परेशानी नहीं आती है. आपने जैसे बात की जैसे कुछ हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है,
0: वो शुगर बीपी, ये जो कॉमन बीमारियां हैं इनके बारे में भी बताना चाहिए.
2: हाँ शुगर, मैं वही शुगर बीपी की बात कर रहा हूँ. शुगर बीपी के लिए देखिए बहुत सारे प्लान हैं जो स्पेसिफिकली उस चीज को कवर करते हैं. स्लाइड्स उनके अंदर प्रीमियम ज्यादा होता है, आप उनको कीजिए. क्योंकि देखिए मैं एज एन एडवोकेट हम लोग फेस करते हैं कोर्ट में केसेस जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि शुगर ऑलरेडी नोन थी पर्सन को और वो नहीं बताई गई और उसके बाद जो क्लेम हुआ. देखिए शुगर एक ऐसी बीमारी है, वो शुगर हमारी बॉडी के हर चीज को इफेक्ट करती है
0: जी.
2: वो इस कारण वो डिस्क्लोजर बहुत इम्पोर्टेंट,
0: बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो छोटी छोटी परेशानियां हैं जिसे हम कॉमन समझ लेते हैं लेकिन पॉलिसी में इस तरह की बीमारियों का जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस एजेंट को. सर एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले पवन हैं, दिल्ली से लिख रहे हैं. कहते हैं मैंने एक प्लान लिया है जिसमें

0: मेरी एजेंट ने मुझे कुछ भी बातों में बहलाकर प्लान दे दिया है तो क्या मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, और मुझे इसका, यदि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा तो मुझे उसका कुछ रिटर्न वापस मिलेगा, और मेरा प्लेन 20 साल का, ओके, मेरा प्लान जो है वो 20 साल का है और प्रीमियम जो है 65,000 पर एनम है।
1: देखिए पवन जी, आपने जो कहा कि आपका आपने एक पॉलिसी कराई है जिसका 20 साल का पीरियड और 65 साल, देखिए हर पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले मैंने कहा अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कि हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से ये पढ़ें कि हम पॉलिसी क्या करा रहे हैं, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, और आज के टाइम में अवेयरनेस का टाइम है, हम किसी पर अंधा विश्वास मत करें क्योंकि कोई भी अपने फायदे के लिए हमको कुछ भी बेच सकता है
0: जी।
1: और इसका खामियाजा तब भुगतना पड़ता है जब क्लेम रिजेक्ट होता है और कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है और या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, तो तब परेशानी आती है
0: जी।
1: तो इस कारण जो भी पॉलिसी लें अच्छे से समझ के लें। दूसरा मैं एक चीज और कहूंगा यहाँ पे, अगर आप किसी पॉलिसी को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, आज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या आपको ये कहा गया, आपको लगा कि आपने जो कहा था वो जो आपने पॉलिसी मांगी थी वो आपको नहीं दी गई है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको IRDA अलाउ करती है वेटिंग, आपका जो फ्री लुक पीरियड है उसमें आप पॉलिसी कैंसिल भी कर सकते हैं, 30 डेज तक का पीरियड है आपका
0: जी जी जी,
1: तो ऐसी भी रेमेडी अवेलेबल है।
0: अच्छा सर, हमारे पास ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, लिखने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, ये जानना चाहते हैं कि बीमा में प्रीमियम और नॉमिनी ये क्या होते हैं। तो मुझे लगता है हमारे बहुत से लिसनर्स ऐसे भी होंगे जो इन दोनों टर्म से बहुत ज्यादा मुखातिब नहीं होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि ये क्या है, तो वो उन्हें थोड़ा सा आप
1: मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल सुन के क्योंकि अब
0: क्योंकि प्रीमियम बहुत लोग सुनते हैं बट की बात समझ नहीं आता।
1: देखिए मैं इनको बड़ा
0: अप्रिशिएट करना
1: चाहूंगा कि बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा
0: जी,
1: और कोशिश करूंगा कितना सरल भाषा में इनको जवाब दे पाऊं। देखिए बीमा एक ऐसी चीज है जो आपको किस्त के बदले, आप समझ लीजिए कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो, एक बीमा धारक और कंपनी के बीच में
0: जी।
1: बीमा धारक एक फीस देता है, किस्त देता है, एक फीस की तरह होती है जिसको हम किस्त बोलते हैं, जिसके बदले में कंपनी उसको एक प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करती है, ये प्रॉमिस करती है कि आपके इस दुर्घटना या मृत्यु या एक्सीडेंट हो जाने पे हम आपको इतना पैसा देंगे। तो किस्त वो हुई, प्रीमियम वो हुआ जो आप कंपनी को पे करते हैं। और दूसरा आपने पूछा था कि प्रीमियम के अलावा
0: नॉमिनी क्या होता है।
1: नॉमिनी, देखिए नॉमिनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसकी इंपॉर्टेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर सबसे ज्यादा है
0: जी।
1: नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर उसका नाम अपने फॉर्म में सबमिट करता है एज ए पर्सन जिसको उनके ना रहने के पॉलिसी के चलते अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्लेम उनको पेबल होता है, वो नॉमिनी वो व्यक्ति है।
0: ओके,
1: और इसमें यहाँ पे उन्होंने अच्छी बात पूछी है नॉमिनी के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि नॉमिनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट में जो हमारे मैटर्स पहुँचते हैं उसमें 30-40% मैटर नॉमिनी को लेके होते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक पर्सन जो 25 ईयर के हैं उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और अपनी मदर को नॉमिनी बना दिया
0: जी।
1: अब उनके 2 साल बाद शादी हो गई, 37 की ईयर में मान लीजिए एज में अनफॉर्चुनेटली उनकी किसी की वजह से डेथ हो गई
0: जी।
1: अब नॉमिनी है मदर, अब हमारे
0: अगर शादी हो चुकी
1: कानूनी वारिस के हिसाब से बोलेंगे तो मदर और बच्चे भी हैं
0: जी जी।
1: तो अब यहाँ पे मदर अगर क्लेम करने आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि वो उस नॉमिनी को क्लेम देंगे
0: जी,
1: लेकिन
0: अगर भी है,
1: अगर उनकी वाइफ जो है वो अगर कोर्ट चली जाती है और वो कहती है कि इस पॉलिसी के ऊपर मेरा पहला राइट है
0: जी,
1: तो उस केस में हो सकता है कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को ये कहते कि स्टे लगा दे उसके ऊपर कि ये पेमेंट आप नहीं करेंगे और ये केस अभी हम देखेंगे
0: जी,
1: और उस केस में फिर उस केस को कोर्ट डिसाइड करेगा। सो नॉमिनी इज नॉट नेसेसरली ए रिसीवर
0: जी,
1: तो और वो भी डिपेंड करेगा उस केस।
0: तो क्या नॉमिनी चेंज भी किया जा सकता है?
1: मैं इसमें वही आ रहा हूँ, इसी वजह से ये एडवाइजेबल है कि आपकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, लाइफ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नॉमिनी चेंज कीजिए।
0: अच्छा, नॉमिनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं?
1: हाँ, मोर देन वन नॉमिनी भी आप रख सकते हैं।
0: okay.
1: उसमें आपको परसेंटेज बतानी पड़ती है कि 30%, 40% आप रख सकते हैं। हर मतलब एज पर इंश्योरेंस रूल्स इट इज वेरी मच अलाउड।
0: ओके,
1: तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे जैसे लाइफ सपोज इनकी मदर की डेथ हो गई, तो इमीडिएटली उनको नॉमिनी चेंज कराना चाहिए। और मान लीजिए उनकी मदर की डेथ हो गई होती और नॉमिनी ब्लैंक होता, उसमें और कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाते हैं। उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ता है, और ऐसे केसेस हमारे पास रोज कोर्ट में आते हैं।
0: जी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सर ने बात बताई कि किसी भी पॉलिसी को लेते वक्त ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको उसमें नॉमिनी जरूर देना है, और यदि किसी वजह से आप नॉमिनी लाइव आगे फ्यूचर में चेंज कराना चाहते हैं उनका नाम, तो आप वो भी कर सकते हैं। टाइमली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से सवाल हम तक पहुंच रहे हैं और कॉल्स भी हम तक आ रहे हैं, लेकिन यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बता दें, आज रेनबो हेल्पलाइन में हमारा विषय है इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, और हमारे साथ एक्सपर्ट एडवोकेट श्री संजय कुमार गिरोत्रा जो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको बातें बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। यदि आप हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट के साथ कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 2342-1084। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के बाहर से जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं उन्हें 011 लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारा आज का विषय है इंश्योरेंस लॉ रिलेटेड मैटर्स. और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट संजय कुमार गिरोत्रा. सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम तक पहुंचा है. लिखने वाले हैं उपेंद्र कुमार नोएडा से. कहते हैं, वकील साहब ने जैसा कि अभी बताया कि इंश्योरेंस लेने से पहले लोग एप्लीकेशन की शर्तें नहीं पढ़ते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शर्तें हमने पढ़ ली हैं लेकिन हम उनसे सहमत नहीं है. तो ऐसे इसमें क्या होगा? क्या कंपनी हमारे हिसाब से अपनी शर्तें बदलेगी? क्योंकि एप्लीकेशन में शर्तें जनरली स्टैंडर्ड होती हैं जो सभी के लिए कॉमन होती हैं.
1: ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. ये लीगल बेसिकली आप देखिए, आमतौर पे जो कंडीशंस होती हैं, जो अगर हम नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ टर्म्स की बात करेंगे
0: जी,
1: वो कॉमन होती हैं, वो ऐसी कोई आपको हार्मफुल भी नहीं होती हैं. ठीक है, मेरा मतलब बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन से इस तरह से था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे पॉलिसी के इंक्लोजर और डिस्क्लोजर की बात है, हमने जैसे मुझे ये पता रहना चाहिए कि अगर मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी कराई है उसके अंदर मेरे कौन सी डिजीजेस कब से कवर शुरू होती है. मेडिक्लेम पॉलिसीज में फॉर एग्जांपल जनरली 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है
0: जी,
1: एक्सीडेंट को छोड़ के. अब कोई डिजीज उससे पहले हो जाएगी, अब उस कंडीशंस को तो आपको एग्री करना ही है ना
0: जी.
1: वो तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशंस है, वो नहीं चेंज करेंगे. और कुछ ऐसी कंडीशंस जो आपकी डिजीजेज से रिलेटेड है, बीमारियों से रिलेटेड है, वो आपको पता रहना चाहिए कौन सी आपकी बीमारियां कवर कब होंगी. और मान लीजिए कोई आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं उसका कवरेज कब से होगा, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती हैं. हर पॉलिसी में डिफरेंट प्रीमियम्स होते हैं. तो इसमें मैं ही सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऑथराइज्ड इंश्योरेंस एडवाइजर से सलाह लें, या आज के टाइम में इंटरनेट पे हमारे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है. ये खुद को अपने आप को अवेयर करें एज ए कंज्यूमर. इवन इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA जो है वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है.
0: सर, यहाँ ना एक और इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल आया है और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो है इस बात से बिल्कुल मतलब जानना चाहते होंगे. सुनील पांचगो फ्रॉम कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट आसाम से बोल रहे हैं, नागालैंड बॉर्डर से. इनका बहुत ही अच्छा सवाल है. ये अपने विलेज के बारे में बताना चाहते हैं जहाँ पर पीपल जो हैं, लोग जो हैं गरीब हैं, उनके प्रॉपर हाउसेज नहीं हैं, तो वो किस तरह से इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं? क्या जो गाँव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो भी इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर पर जो रूरल एरिया में रहते हैं, नेचर के बहुत पास हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं हैं, कार्स नहीं हैं, छोटे छोटे झोपड़ियाँ टाइप के लोग हैं, जिनको जिन लोगों को बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में पता भी नहीं है. जैसा कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे पापा जो हैं 70 साल के हैं लेकिन आज तक उन्होंने इंश्योरेंस अप्लाई नहीं किया. तो उनके लिए मतलब कैसे वो करें और कितना जरूरी है, एक बार थोड़ा सा आप इसके बारे में भी जरूर बताइए.
1: बड़ा अच्छा लगा मुझे इतनी हमारे नॉर्थ ईस्ट से कि सवाल आया और ये बड़ा अच्छा बड़ा

0: बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी।
1: अभी इन्होंने, मैं इनका आगे का सवाल का हिस्सा पहले ले रहा हूँ, इन्होंने अभी बताया अपने फादर के बारे में जो 70 साल के हैं
0: जी।
1: इसमें मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ
0: स्कीम
1: है वो लॉन्च की है आज 2024 में, शायद ये लॉन्च हुई थी। और ये स्कीम जो है, एक तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग भी हैं वो कहीं पर भी हैं उनको कवर करती है, पूरी फैमिली का 5 लाख तक का मेडिकल का कवरेज करती है
0: जी।
1: इसके अलावा उसी स्कीम का बाद में एक्सटेंशन किया गया था व्यय वंदन करके, जिसमें सरकार ने पूरे भारत में जितने भी लोग 70 एंड अबव हैं, 70 साल से ऊपर, उनका 5 लाख का मेडिकल का इंश्योरेंस और उसमें जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब लोग कैशलेस प्रोवाइड कराते हैं। तो अपने फादर को ये सबसे पहले इंश्योर करा सकते हैं उसके अंदर। और अगर यहाँ पर लोगों की अपनी इकोनॉमिकली जो इनकम है कम है तो वो उसमें भी अपने आप को इंश्योर करा सकते हैं आयुष्मान भारत में
0: जी।
1: इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की जहां तक बात करेंगे, LIC लाइफ इंश्योरेंस, अगर गवर्नमेंट
0: ऑर्गेनाइजेशन,
1: मैं किसी कंपनी को कोई प्रमोट करने का, क्योंकि
0: LIC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
1: गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम ले सकता हूँ क्योंकि उसका लाइफ इंश्योरेंस का जो रीच है बिल्कुल इंटीरियर रूरल में भी है
0: जी।
1: आपको वहाँ पे इंश्योरेंस के उनके ऑफिसेस मिल जाएंगे।
0: तो आई थिंक सुनील जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सर यहाँ पर एक ब्रेक लेना बनता है और क्योंकि हमारा कुछ एक जरूरी चीजें रह गई हैं और हम वो लेते हैं। तब तक हमारे लिसनर्स अपने सवाल का कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से लिखकर भेजिए क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है। और आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस लॉ रिलेटेड मैटर्स।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन में आपका स्वागत। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट संजय कुमार गिरोत्रा, जो इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हैं। यदि आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2342108 और 2342108। यदि दिल्ली के बाहर से आप हमें कॉल कर रहे हैं तो आप 011 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर, एक सवाल है, कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में आम आदमी के पास क्या अधिकार होते हैं, ये जरूर आप बताइए हमारे लिस्टनर्स को।
2: देखिए, बहुत ही जरूरी है ये प्रोग्राम। अगर ये सवाल नहीं दिया जाएगा तो प्रोग्राम मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होगा।
1: जी
2: देखिए, इंश्योरेंस क्लेम जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो पहली चीज आपका ये अधिकार है ये पता करना कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी इस चीज के लिए बाउंड है कि वो आपको रिजेक्शन का रीजन बताए।
1: जी
2: ठीक है। उसके अलावा जब आपके पास रिजेक्शन का रीजन आ जाता है, उसके बाद आप पहला स्टेप है, आप इंश्योरेंस के कंपनी के ग्रीवियंस सेल में अप्रोच कीजिए और वहाँ पे अपना, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं वहाँ पे अपना ग्रीवियंस डालिए, अपनी शिकायत डालिए। अगर आपको वहाँ से भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता, उसके बाद आप IRDA को अप्रोच कर सकते हैं। IRDA का पोर्टल है बीमा भरोसा करके, और उसको आप वहाँ पर जाइए। आपको वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, इसके बाद आप एक बॉडी है इंश्योरेंस ओबट्समैन। इंश्योरेंस ओबट्समैन जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनकी कंप्लेंट्स टेकर करता है, इसी तरह से वहाँ पे बैंकिंग ओबट्समैन है, यहाँ पे इंश्योरेंस ओबट्समैन है। तो इंश्योरेंस ओबट्समैन में आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और उसमें आपको कोई वकील हायर नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाता है। वहाँ पे कोशिश की जाती है पहले दोनों पार्टीज को बिठा के मीडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाता है। अगर नहीं होता तो फिर वो उस अकॉर्डिंगली ऑर्डर निकालते हैं, जो भी जो दोनों के ऊपर बॉन्डिंग होता है। और अगर आपकी सेटिस्फेक्शन वहाँ से भी नहीं है, उसके बाद आप कोर्ट को अप्रोच सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट को, देन सिविल कोर्ट्स को, वो आपके पास सारी ऑप्शंस खुली हैं।
1: अच्छा, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है यदि वो क्लेम रिजेक्ट कर देती है तो क्या वो उसे रिटर्न में देने के लिए बाध्य होती है, उसे देना पड़ेगा कि किस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है?
2: बिल्कुल मैडम, ये रश्मि जी, ये बिल्कुल जरूरी है और ये उनके ऊपर लीगल बाइंडिंग है।
1: जी
2: अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस बिना आपका कारण बताए आपका क्लेम रिजेक्ट करती है तो आप उसकी कंप्लेंट IRDA में कर सकते हैं।
1: जी
2: और उनको कारण देना ही है, दे आर बाउंड टू गिव।
1: ओके, एक सवाल आया है किशनगंज दिल्ली से, पैंथर तोमर लिख रहे हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसी कारणवश रद्द कर दिया जाता है तो पॉलिसी की टर्म और कंडीशन हिसाब से, जो पॉलिसी की टर्म और कंडीशन के हिसाब से वाजिब नहीं है, तो इसकी शिकायत कहां पर की जा सकती है?
2: देखिए, इसकी शिकायत आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर रद्द कर दी जाती है तो आपके पास सारे एवेन्यूज हैं, जैसे कि पहला एवेन्यू इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA है। वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप इंश्योरेंस ओबट्समैन में जा सकते हैं। वहाँ भी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपकी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी है, वो एक इंश्योरेंस वॉचडॉग है, इंश्योरेंस IRDA है, वो उसको देखता है। बाकी आपके पास जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो खुली ही हैं सारी।
1: राजेंद्र चौहान रोहिणी से लिख रहे हैं कि यदि कोई नॉमिनेशन नहीं होता तो क्लाइंट को क्या करना चाहिए, विदाउट नॉमिनेशन क्या क्लेम पेड नहीं होते, और साथ साथ इन केस ओपन टाइटल। आई थिंक इसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो एक बार आप एक लाइन में फिर से
2: एलाबोरेट कर देता हूं मैडम। देखिए, ऐसा है कि जहां पर ओपन टाइटल होता है तो उस केस में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, उस केस में फिर जो फॉर्मेलिटी ये है कि कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट या सर्वाइव मेंबर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है और तभी उसके बाद क्लेम मिल पाता है। लेकिन इसके लिए मैं दोबारा कहूंगा कि इंश्योरेंस लेते समय नॉमिनी जरूर कीजिए और नॉमिनी जरूर अपना नॉमिनेट कीजिए और उसके बाद उस नॉमिनी को अपडेट करते रहिए अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कंपनी में, ताकि आपको कोई भी कानूनी परेशानी ना आए। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास कोर्ट में आधे केसेस नॉमिनेशन और लीगल हायर से रिलेटेड है।
1: सर, एक और सवाल है, जैसे आपने अभी अभी बोला कि लीगल हायर और नॉमिनी, इन दोनों में क्या फर्क है?
2: बताता हूँ। देखिए, नॉमिनी वो व्यक्ति है जो इंश्योर पर्सन जिसका नाम एज रिसीवर ऑफ पॉलिसी डालता है कि मेरे मरने के बाद इनको पैसा दिया जाए, कंपनी के रिकॉर्ड्स में वो नाम है
1: जी।
2: लीगल हायर वो इंसान है जो एक व्यक्ति का कानूनी वारिस है कानून के हिसाब से, और जो भी जिसको बिलोंग करता है चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है उस लॉज के हिसाब से जो कानूनी वारिस है वो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि किसी ने मदर को नॉमिनेट किया और उधर उसके बाद फिर उनकी वाइफ क्लेम करने आ गई, तो यहाँ पे विरोधाभास आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता
1: है। सर एक सवाल और मेरे मन में बहुत ज्यादा आ रहा है कि यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और क्लेम अटक जाता है, उस केस में परिवार वाले क्या करें?
2: देखिए अगर क्लेम अटक जाता है तो पहले जैसे मैंने आपको कहा था अपने इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस सेल में पहले अप्रोच किया कि हमारा क्लेम अटका क्यों है। अटका से मतलब आपका मतलब कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है।
1: जी जी जी
2: ठीक है। तो उसमें कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट का इश्यू हो, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है
1: जी।
2: तो आप उनको अप्रोच कीजिए, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट सब जो रह रहे हो उसका सबमिट करके आपका रिजोल्यूशन निकल जाए
1: जी।
2: अदरवाइज फिर अगर वो ये कहते हैं कि आपका क्लेम हो ही नहीं सकता, देन उसके बाद आपको उनको क्लियर कहना है कि आप हमारे को राइटिंग में दीजिए।
1: ओके
2: उसके बाद जब वो आपके पास राइटिंग में आ जाता है, आपकी तसल्ली नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपका पूरा मैकेनिज्म बताया, आप पहले IRDA उसके बाद इंश्योरेंस ओबर्ट्समैन उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट्स आप जा सकते हैं।
1: सर एक टर्म हम आजकल सुन रहे हैं टर्म इंश्योरेंस, उसमें और जो नॉर्मल पॉलिसी होती है उन दोनों में क्या फर्क है?
2: देखिए टर्म इंश्योरेंस जो एक ऐसी ही चीज़ है जो जिसके अंदर हमारा लाइफ का कवरेज होता है। जनरली एक्चुअली डिफरेंट टाइप के टर्म इंश्योरेंस आजकल आ गई हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब यह है कि अगर एक इंसान ने मान लीजिए पॉलिसी कराई 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी कराई, टर्म इंश्योरेंस जनरली कम प्रीमियम पे हो जाती है।
1: ओके
2: और बेस का मेन पर्पज होता है प्रोटेक्शन।

0: जी
1: एक एक पर्सन जो 25 साल के हैं वो अगर 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उनका हार्डली साल का 10-12 हज़ार प्रीम जाएगा, ठीक है। और वो अगर नॉर्मल प्योर टर्म इंश्योरेंस होगी तो उनकी मान लीजिए 40 साल की उन्होंने पॉलिसी कराई, उन 40 साल वो 12 हज़ार ईयरली देते रहेंगे
0: जी।
1: और उसके बाद इन 40 साल में अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई डेथ हो गई, तो वो 1 करोड़ रुपया उनकी नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन अगर 40 साल के बाद कुछ नहीं हुआ तो वो जो पैसा गया है उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा
0: जी।
1: अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये तो बेकार है, इसका क्या फायदा, मोटर इंश्योरेंस भी तो आप कराते हैं
0: जी, जी।
1: साल का 25-25 हज़ार प्रीमियम देते हैं, वो भी कभी कभी कुछ नहीं होता, तो अपनी लाइफ को क्यों इग्नोर करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक गुड प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल नॉर्मल इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर आमतौर पे बोनसेस भी इंक्लूड होते हैं, प्रोटेक्शन भी होता है, लेकिन उसका कंपैरेटिवली प्रीमियम ज्यादा रहता है। ये आपको अपनी नीड के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस करवाना है
0: जी। हमारे पास हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं, उन्हें एक प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है, उनमें शरद है, राजेंद्र चौहान है, और सर एक सवाल और आया है, ये पूछना चाहते हैं नो क्लेम बोनस क्या होता है, यदि कोई किसी पॉलिसी हम क्लेम नहीं करते हैं तो उस केस में क्या बोनस।
1: देखिए नो क्लेम बोनस एक बेसिकली जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज का टर्म है, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसीज में नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं उनका मान लीजिए 1 साल में कोई क्लेम नहीं आया
0: जी,
1: तो उसके अंदर नो क्लेम बोनस आमतौर पे आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आपने पूरे साल कोई क्लेम नहीं लिया, वो आपके नो क्लेम ना लेने का एक रिवॉर्ड है
0: जी।
1: ऐसे ही किसी ने मोटर इंश्योरेंस कराया और उनका क्लेम नहीं हुआ पूरे साल, तो अगले साल उनको प्रीमियम के अंदर कुछ सर्टेन डिस्काउंट मिल जाएगा, वो नो क्लेम बोनस। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है
0: जी,
1: इट इज अ रिवॉर्ड।
0: ओके, तो यदि आप भी रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो ना तो आप बीमार पड़िए और ना ही आपको जब आप घर से बाहर अपने किसी व्हीकल के द्वारा निकलते हैं, कार, बाइक, स्कूटर या कैसे भी, तो आपको बहुत ही सेफली ड्राइव करनी है और तभी आप अपना प्रीमियम बचा पाएंगे और नेक्स्ट पॉलिसी में आपको रिवॉर्ड मिल पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज हमारा विषय रहा है, इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ थे श्री संजय कुमार गिरोत्रा सर। चूंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है और चलते चलते मैं ये चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स को एक पूरे इस प्रोग्राम का आप एक वाइंड अप की, मतलब क्या पॉलिसी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल रहे होंगे हमारे लिसनर्स के मन में भी, हमारे मन में भी थे, जो समय की कमी की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं, तो लेकिन चलते चलते आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे।
1: एक तो मैं अच्छा कहना चाहूंगा कि आप ये जो इंटरेक्शन था बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे
0: जी।
1: देखिए इंश्योरेंस जैसे कि मैंने आपको पहले कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा अगर खाना खाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस
0: जी,
1: स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस और हमारा लाइफ इंश्योरेंस
0: जी,
1: ठीक है। और ये इंटेंजिबल असेट है जिसको कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंश्योरेंस कराते समय अपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस का अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए कि आप क्या करवा रहे हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग से अपनी अपने जैसे कि आपने बताया कि नीड के अकॉर्डिंगली, और इसके अलावा जो आप चाहते हैं कि जिस तरह के पॉलिसी के अंदर हो वो आप टर्म्स एंड कंडीशन जिस तरह चाहते हैं, जो डिजीजेज इंक्लूड हो या एक्सक्लूड हो, वो उनको डिस्क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: अगर आप उन चीज को
0: बेसिकली अपने एजेंट को सारी बातें आप क्लियरली बताइए, बीमारियों के बारे में भी बताइए और जो जो आपकी जरूरत है, जिन पॉइंट्स को आप अपनी पॉलिसी में चाहते हैं वो उन्हें आप खुलकर बताएं।
1: और इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इंश्योरेंस करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अफोर्डेबिलिटी से बहुत ऊपर जाकर इंश्योरेंस करा सकते हैं, करा लेते जो बाद में कंटिन्यू नहीं हो पाता और उसका नुकसान फैमिली को भुगतना पड़ता है। सो इसके अलावा इसका मैं थोड़ा सा एक कहूंगा, मैं एज एन एडवोकेट इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हूँ जिसमें मैंने एक किताब भी लिखी है इंश्योरेंस लॉ के ऊपर। तो इस किताब में इसी बारे में बहुत सारी यूजफुल बातें दी गई हैं
0: जी। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, कोई और भी क्वेरी है तो आप आगे भी हमारे प्रोग्राम्स में जुड़ सकते हैं और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, बुक्स में बहुत सी जानकारियां होती हैं, वो भी ले सकते हैं। और सबसे जरूरी है कि आप अपने एजेंट से मिलें और यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उनसे खुलकर बात करें। सर आज इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिसनर्स को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा ये रहा और ये अपॉर्चुनिटी और लिसनर्स से लाइव मैं इंटरेक्ट कर पाया। थैंक यू सो मच।
0: और हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े इस समय हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं उनका भी

0: आशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है आपके फेवरेट प्रोग्राम आशियाना की और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। तो दोस्तों, आशियाना में आज हम बात करने वाले हैं परिवार की उस आदत की, कह सकते हैं कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास ही नहीं होता, लेकिन हाँ, हर मॉल, हर ऑनलाइन ऐप और हर फ्लैट 70% ऑफ वाले पोस्टर के पास ज़रूर होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शॉपिंग मेनिया की। घर में मम्मी का अलग कार्ट, पापा का अलग बजट, बच्चों की अलग अलग डिमांड और दादी की वो लाइन कि हमारे ज़माने में तो दो जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकल जाता था। आई एम श्योर आपके घर में भी कुछ ऐसे ही नज़ारे, कुछ ऐसी ही बातें होती होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं शॉपिंग और फैमिली ड्रामे का ये मज़ेदार सफ़र इस शानदार गाने के साथ।

दोस्तों पता है क्या होता है कि घर में कई बार किसी एक चीज को लेकर बहुत डिस्कशन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं और उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है इसको लेकर एक लंबी चर्चा चल जाती है। और पता है, और इसमें सबसे जो अच्छी बात ये होती है कि जिसको स्मार्ट शॉपिंग की समझ होती है उसी की दाल गलती है और उसी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। और अगर बात करें स्मार्ट शॉपर की, तो आपके घर में कौन करता है स्मार्ट शॉपिंग? आपकी मम्मी या फिर आपकी बहन? क्योंकि उन्हें ना पता होता है कि कौन सी सेल असली है और कौन सी सिर्फ दिल बहलाने वाली है। किचन के डब्बों से लेकर नए पर्दों तक, और ये कुशन कवर बहुत ज़रूरी थे। ऐसा लॉजिक भी ना उनका तैयार रहता है। लेकिन पता है, सच कहूँ ना, घर को खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा योगदान भी इन्हीं का होता है। तो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में हम बात कर रहे हैं घर की शॉपिंग मेनिया की।

फिल्म हाय पापा से सुन रहे थे आप ये गाना। और दोस्तों, अगर बात करें घर में पापा के रोल की, तो पापा जब मॉल में घुसते हैं ना, तो पहले ही कह देते हैं कि भाई कुछ खरीदना नहीं है। उनका ये इंस्ट्रक्शन पहले ही आ जाता है। लेकिन होता क्या है ना, 2 घंटे बाद जब वो नज़र आते हैं एक महंगी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पसंद होती हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और फिर शुरू हो जाता है उनका फेवरेट डायलॉग कि भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और पता है, पापा की शॉपिंग कम, रिसर्च ज़्यादा होती है। रिसर्च क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले वो उसका ऑनलाइन प्राइस चेक करते हैं, अलग अलग पोर्टल पर भी उसका प्राइस चेक किया जाता है, और पता है वो फीचर्स का कंपैरिजन भी करते हैं। और ये सब काम ना पापा से आपको भी सीखना चाहिए, क्योंकि इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग।

बिल्कुल दोस्तों, कुछ घरों में ऐसे लोग भी होते हैं जो शॉपिंग को जितना हो सके अवॉइड करते हैं, आधे पौने में काम चलाते हैं, कभी रफू करवाते हैं, कभी रिपेयर करवाते हैं और पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, जिससे उनके घर का जो बजट है वो बना रहे। तो फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल गाना।

बिल्कुल दोस्तों, आकाशवाणी के जो 90 साल हैं वो बेमिसाल हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि आप हमसे और हम आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और कहीं ना कहीं बहुत सारे गाने ऐसे चुन चुन के आपके लिए लाते हैं जिससे आपका हो भरपूर एंटरटेनमेंट। कुछ ऐसा ही एक गाना लेकर आई हूँ

बिल्कुल दोस्तों, माँ के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो बहुत खास होता है। कई बार हमारी सारी फरमाइशें माँ सुनती हैं और कहीं ना कहीं मना करने के बाद भी वो कोशिश करती हैं कि वो हमारी सारी फरमाइशों को पूरा करें। तो फिलहाल प्रोग्राम आशियाना में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद ढेर सारी बातें जारी रहेंगी फैमिली के शॉपिंग मेनिया के बारे में।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अरा

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। और आज प्रोग्राम आशियाना में हम बात कर रहे हैं परिवार के शॉपिंग मेनिया की। और अगर बात करें हम बच्चों की, तो उनकी शॉपिंग का ना कोई मौसम नहीं होता। आज खिलौना चाहिए, कल नया गेम, परसों सुपर हीरो वाला बैग, और पता है उनका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? मॉल के बीचों बीच मासूम सा चेहरा बनाकर कहना, सबके पास है, मेरे पास ही नहीं है। फिर बेचारे पेरेंट्स का बजट बस भावनाओं में बह जाता है। आपके घर में भी छोटे नटखट बच्चे होंगे ना, और कुछ ऐसा ही अंदाज आप भी अपने घर में जरूर देखते होंगे। तो बच्चों के लिए ये प्यारा सा गाना।

वैसे दोस्तों शॉपिंग ना कुछ लोगों के लिए मस्ती भी है, क्योंकि कुछ दो सहेलियां एक साथ मिल जाएं और जाएं शॉपिंग पर तो ये उनके लिए फन का एक नया ही अंदाज है। और अगर आज के दौर में बात करें तो ऑनलाइन सेल, ब्रांडेड चीजें, बच्चों के गैजेट, मम्मी की होम डेकोर लिस्ट और पापा के बस देखने आए हैं वाले शॉपिंग ट्रिप हर घर की ना कहानी बन चुके हैं। परिवार में शॉपिंग अब सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि एक इमोशन है और कभी कभी ये कंपटीशन की तरह भी नजर आता है। कैसे ये कंपटीशन बन गया है इसके बारे में करेंगे बात। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

कमाल की बात पता क्या है, और भी लोग खड़े थे वहां पे, पर उसने मुझसे आके पूछा, एक्सक्यूज मी, इज इट 12/25 मॉडल टाउन इन अ मार्केट? सबकी शक्ल देखने वाली थी, जल ककड़ू गई।

बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट साइट वाला लव हो जाता है किसी भी चीज से जब मार्केट में उसे देखते हैं और लगता है कि ये चीज बहुत नायाब है, हाथों की एक खास कलाकारी नजर आती है, तो मन करता है कि इसको तुरंत ही अपने पास ले लिया जाए, खरीद लिया जाए। ऐसा ही कुछ होता है जब पहले लोग बाजार घूमने जाते थे, अभी भी जाते हैं, हालांकि संख्या कम नजर आती है क्योंकि आजकल घूमता है अंगूठा और शॉपिंग बस यूं ही हो जाती है। रात के 2 बजे भी अगर कोई जाग रहा है तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो उसे नींद नहीं आ रही या फिर कोई बड़ी सेल चल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग ने बस एक नई आदत दे दी है। ऐसे में कई लोगों को ना ऐड टू कार्ट करके ही सुकून मिलता है। और पता है, हर दिन उनके घर में कोई ना कोई पार्सल आ रहा होता है। क्या आपके आसपास भी ऐसे ही लोग हैं जिनको आप ऐसा देखते हैं और मेरी बात सुन के आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई, ऐसे लोग तो हमारे आसपास भी हैं। तो आपके लिए बढ़िया सा गाना आपके अपने प्रोग्राम आशियाना में।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना और हम बात कर रहे हैं शॉपिंग मेनिया की। दोस्तों बात करें बुजुर्गों की, तो घर में ना जब बुजुर्ग देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई नया पार्सल आ रहा है, वो बच्चों की शॉपिंग को देखते हैं तो बस मुस्कुरा देते हैं। कहते हैं कि हमारे जमाने में चीज़ें कम थी लेकिन खुशी ज़्यादा थी, और उनकी बातें याद दिलाती हैं कि ज़रूरत और चाहत में थोड़ा सा फ़र्क होता है।

पता है दोस्तों, पहले तो खास मौकों पर ही शॉपिंग होती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर दिन कुछ नया चाहिए। आउटफिट रिपीट नहीं करना है तो नया तो लेना पड़ेगा, लेकिन इसके चक्कर में कभी कभी मनी मैनेजमेंट भी गड़बड़ा सकता है। ये भी सोचने वाली बात है। तो आप सोचिए अपने घर के बजट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में। मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल दोस्तों, आपका और हमारा जो रिश्ता है ना, वो इतना ख़ास है कि हम बात कर रहे हैं परिवार की बॉन्ड की, वो बॉन्ड जो कभी कभी छोटी मोटी तकरार के साथ भी बना रहता है। बात करें घर में भाई बहन की, तो शॉपिंग की जब बात आती है ना, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए ले लिया, मेरे लिए क्यों नहीं लिया, ये लाइन ना हर घर में सुनने को मिल जाती है। लेकिन पता है मज़ेदार बात क्या है? उनका बॉन्ड इतना ख़ास होता है कि वो दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, और उनका जो प्यार है वो बरकरार रहता है, तकरार में भी प्यार।

फिर मैं बॉर्डर टू से सुन रहे थे आप ये गाना। और वैसे दोस्तों, शॉपिंग में ना सीमा तय करनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो घर का बजट बना रहेगा। बात करें अगर शॉपिंग की, तो शॉपिंग बढ़िया है, खुशियां देती है, रिश्तों में रंग भरती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है बैलेंस, क्योंकि घर सिर्फ सामान से नहीं बल्कि साथ से खूबसूरत बनता है। और जब पूरा परिवार साथ हो तो विंडो शॉपिंग भी ना किसी 5-स्टार खुशी से कम नहीं लगती। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी आपको कहूंगी बाय बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। फिलहाल आपके लिए ये खूबसूरत गीत।

0: हाँ आशिकी, कौन से गाना चाहिए आशिकी से?
1: उसमें गाने का बोला जाने जिगर जाने मन।
0: आशिकी जाने जिगर जाने मन।
1: हाँ
0: आ
1: कुमार
0: हाँ
1: सानू की आवाज।
0: अच्छा, अनुराधा और कुमार सानू की अगर आवाज
1: यस
0: में,
1: यस यस।
0: ठीक है बजा देगा। तो
1: सबसे पहले
0: किसको किसको डेडिकेट
1: हाँ
0: करना है आप ये गाना?
1: सबसे पहले तो जेक सर आपके लिए
0: ओके
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमर साहु है, विमल है, और जितने कॉलर बाइकोन मुंडा भी है, और तमाम श्रोता आपके आकाशवाणी कोई माँ के श्रोताओं के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ खासकर,
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके
1: और अमल भी है सर तमाम श्रोता। थैंक
0: ठीक है बजा देगा तब तो। ओके थैंक
1: यू।
0: यू। वेल लिसनर्स कैन फर्स्ट कॉलर आई जैसे तो ने फर्स्ट कॉलर लगा ताई बजाई दी बोले हुनी बोले मना से को आशिकी फिल्म पर अनुराधा पटवाल आरो कुमार सानू लगा वास्ते।

0: Well, of course, second caller, how do you see to when a second caller, Hello?
1: हेलो,
0: Hello?
1: गुड इवनिंग सर
0: Good evening.
1: जी। मैं ड्रॉइंग बना रही, जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ। जी
0: ओके, तनुश्री जी बताइए कैसे हैं आप?
1: सर, मुझे बहुत अच्छी है, रास्ते बात में तो और भी अच्छी हो गई।
0: ओके, थैंक यू।
1: जी, और सर फिल्म का नाम है संगीत।
0: संगीत
1: जी
0: संगीत संगीत
1: जी
0: तो संगीत
1: नहीं
0: संगीत नहीं है हम लोग के पास। बहुत बहुत आया
1: सर,
0: क्या? आई एम सो सॉरी, संगीत नहीं है।
1: तो यार
0: याराना? हाँ याराना,
1: ना
0: तो याराना दो है, पुराना एक तो है और नया एक तो है। कौन से सुनेगा आप याराना?
1: पुराना ही याराना।
0: पुराना ठीक है, पुराना कौन से वाला सुनेगा?
1: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ऐसे करके
0: ओके ठीक है, छू कर मेरी मन को, किशोर कुमार की
1: गाने
0: आवाज में ना।
1: को
0: ओके ठीक है, बजा देगा।
1: बोले सर। जी, और सर मेरे पापा सुन गए, तो मेरे पापा को और
0: ओके
1: आपको और हमारे सभी श्रोताओं को दे
0: ओके
1: दे
0: ठीक
1: सकते।
0: है ठीक है। तनुश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके
1: ओके, बाय बाय।
0: ओके बाय बाय। वेल लिसनर्स का नित्य होनी वो अपने लोग के किशोर कुमार लगा वास्ते फिल्म से याराना।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते।
1: सर। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा
0: ओके
1: जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: ओके, प्रेम सिंह जी बताइए कैसे हैं आप।
1: जी। मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है
0: ओके, थैंक यू धन्यवाद।
1: जी। सर फिल्म का नाम है हीरो।
0: हीरो
1: हाँ
0: हीरो, ठीक है।
1: जी, इसका गाना रहेगा तू मेरा हीरो ही। जी सर कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक ही हूँ, मैं भी चलता हूँ।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सोनी को ही मैं मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ
0: ओके, तू मेरा
1: जी।
0: हीरो है ना
1: हाँ जी सर।
0: गाना का नाम। अच्छा, अनुराधा और मनहर, मनहर उदास का होगा मेरे ख्याल।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है, ये गाना तो बहुत लंबा है, हमें काटना पड़ेगा
1: हाँ तो
0: इसको।
1: बहुत थोड़ा सा सुनवा दीजिएगा आप और अगले कॉलर को ले लीजिएगा,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: है ना?
0: ठीक
1: क्योंकि
0: है।
1: ज्यादा से ज्यादा कॉलर शामिल होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा
0: हाँ, ठीक है ठीक है।
1: जी।
0: ओके
1: ओके सर, थैंक यू सो मच।
0: ओके, थैंक यू थैंक यू। वेल लिसनर्स का नीचे हुनी वो अनुराधा और मनहर लगा वास्ते से फिल्म से हीरो।

0: Hello.
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश तेली।
0: अविनाश तेली ना।
1: हाँ जी जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसा है? आप कैसा है?
1: हाँ, हम भी बहुत बढ़िया हैं और कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, लाभ प्रस्तुति है आपकी।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: जी जी, तो बारिश हो रहा है उधर कोई वहाँ पे?
0: हाँ, बारिश तो होता ही यहाँ तो, एक बार तो होता है।
1: जी, त्रिपुरा तो लगातार दो दिन से बारिश जारी है।
0: हाँ, नोटिस सब में बारिश होगा वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बरसात के मौसम में एक गाना याद आ रहा है, बरसात मूवी से है।
0: बरसात मूवी से ना?
1: जी जी, देखिए तो मूवी हो जाएगा बरसात।
0: बरसात तो है तो
1: अच्छा। तो इसमें देखिए, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: वो तो हम बरसात। जी हाँ
1: जी, कुमार सानू की आवाज में।
0: हाँ, कुमार सानू की आवाज में ना।
1: जी जी जी, मिल जाएगा
0: बरसात। मिल जाएगा मिल जाएगा।
1: अच्छा, तो कुछ छोटा का डेलीगेट करना चाहता हूँ।
0: बरसात की रात, हमको तुमसे। हाँ, हमको तुमसे सिर्फ।
1: हाँ, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: हाँ, ये तो है।
1: ठीक है, तो मेरे साथ है रमेश प्रजापति जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, जाके जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, उसके बाद है अमल बसुमचारी हैं, और है अनुतोष जी हैं, संगीता जी हैं, और अमर सिंह साहू जी हैं, और तनुश्री हैं। और अभी जितने तमाम सुनने वाले हैं,
0: ठीक है,
1: श्रोता भी, सबके लिए डेलीगेशन पर आएगा।
0: ओके, अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके
1: जी जी जी, धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू।
1: आप अच्छा रहिएगा।
0: आप भी ठीक है, आप भी अच्छा रहेगा। ओके
1: जी जी।
0: ओके ओके,
1: थैंक यू
0: थैंक यू थैंक यू। वाल लिसनर्स का इतना होनी वो अपने लोग के कुमार शानू और वाल का यकनिक लगा वस्ते फिल्म से बरसात।

0: हेलो
1: सर,
0: हेलो।
1: नमस्कार
0: हाँ नमस्कार नमस्कार।
1: सर, मैं दुर्गेश नारायणपुर बोल रहा हूँ।
0: ओ दुर्गेश जी, कैसे हैं आप?
1: सर ठीक है, बैठे हैं घर की छत पे, हवा खा रहे हैं।
0: घर की छत पे बैठ के?
1: ये बाबू दिव्यांशु जी, मेरा छोटा बच्चा मेरे पास में।
0: ओके ओके। ये सब आपको बचा है ना, बाबू और दिव्यांश लोग?
1: ये बाबू दिव्यांशु जी, छोटा बच्चा 6 महीने का है, वो छोटा बच्चा।
0: ओके ओके। अच्छा दुर्गेश जी, आप क्या करते हैं?
1: कीबोर्ड प्लेयर हूँ,
0: अच्छा
1: सिंथेसाइजर।
0: ओके ओके। आप मतलब आप म्यूजिक बैंड जैसा है आपका?
1: जी, हाँ म्यूजिक लेते सर हम सभी प्रोग्रामों में।
0: ओके ओके। आप भाग लेता है उस प्रोग्राम में? ओके ओके। तो आज ही आपको आपसे मतलब बात हो रहा है मेरे। पहला एक बार हुआ था ना?
1: हाँ सर, पहले एक बार उसी बात हुआ और फिर बीच में तो लिखना से भी संख्या भी बढ़ गई, तो
0: हाँ संख्या बढ़ गई।
1: फिर बाद में हो पाई, फोन फिर लगना थोड़ा मुश्किल हो गया।
0: हाँ। ठीक है, आज कौन से फिल्म का गाना सुनना है दुर्गेश जी?
1: सर आज लकी अली का सॉन्ग क्यों चलती है पवन।
0: कौन से फिल्म का है?
1: सर फिल्म तो भूल गया मैं, वो
0: लकी अली।
1: लकी अली की आवाज में है।
0: लकी अली, मैं तलाश करके देखता है। कौन से क्या गाना का बोल क्या है?
1: क्यों चलती है पवन।
0: क्यों चलती है पवन?
1: नहीं तो फिर ये सिर्फ तुमका वो सुनवा दीजिए, आप बता दीजिए सिर्फ तुम के कौन कौन से गाने हैं।
0: कौन से मूवी से?
1: सिर्फ तुम।
0: सिर्फ तुम से ना? ओके
1: जी, सर बता दीजिए थोड़ा।
0: सिर्फ तुम से तो दिलबर है,
1: जी।
0: एक मुलाकात जरूरी है सनम, और पंछी सुर में गाती है, पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: हाँ हाँ सर, ये वाला पहली पहली बार मोहब्बत की।
0: ओके, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ना?
1: जी सर।
0: तुर्गेश जी, ये गाना बहुत लंबा है इसलिए मुझे काटना पड़ेगा इसको।
1: हाँ सर, नहीं तो फिर दिलबर वाला भी अच्छा है।
0: हाँ ये भी लंबा है तो, लेकिन
1: लंबा है, छोटा पंछी सुर में गाते है, ये वाला सुना दीजिए, छोटा है ये।
0: पंछी सुर में?
1: हाँ
0: हाँ ठीक है, वो ये बजा देगा तब तो आपको।
1: जी सर।
0: ओके ओके ठीक
1: सर,
0: है।
1: मेरे कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ ले लीजिए।
1: सबसे पहले भाई मुंडा, रमेश पत्रो,
0: ओके,
1: सुभाष जमीन, रोके विले मेहता,
0: हाँ जी,
1: अमल बसुमत्री, विमल बसुमत्री,
0: ओके,
1: और मेरी फैमिली के लिए और आप सभी आरजे और सभी लिसनर्स के लिए।
0: ठीक है, बजा देगा बजा देगा। ओके ओके, धन्यवाद दुर्गेश जी। ओके थैंक यू। वेल लिसनर्स, का नीति होनी वो अपने लोग के उदित नारायण लगा वास्ते से फिल्म से सिर्फ तुम।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके राकेश जी, बताइए कैसा है आप?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, अभी जो है मौसम बिल्कुल मौसम साफ है।
0: ओके ओके ठीक है ठीक
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: गर्मी भी चल रहा है, वाह।
1: 25-30 तक तापमान है,
0: वो तो बराबर है यहाँ जैसा है तब तो
1: जी। तो ये पहाड़ी राज्य में तो इतना ही होता है।
0: हाँ,
1: और
0: शिमला भी पहाड़ी राज्य है तो ना।
1: जी, शिमला पहाड़ी राज्य। और मेरा तहसील तो था कोटखाई। इधर हमारे जो है सेब के बाद ये सेब की खेती होती है, हम सेब की जो है देख रेख करते हैं और हम उसको पूरे भारत वर्ष में बेच देते हैं।
0: ओके ओके, सेब का खेती करता है ना?
1: जी, हम सेब का खेती कर रहे हैं।
0: ओके ओके,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: कौन से गाना सुनना है राकेश?
1: जी आज मुझे गाना सुनना है। अगर फिल्म का नाम है इतिहास।
0: इतिहास,
1: जी
0: हाँ इतिहास तो है। हाँ कौन से गाना सुनना है इतिहास से?
1: उसमें एक गाना है चोरी चोरी,
0: चोरी चोरी, अलका और कुमार सानू का ना।
1: कुमार सानू। जी जी जी
0: ठीक है, लंबा है गाना तो काटना पड़ेगा क्योंकि
1: हाँ,
0: दूसरा
1: तो एक बिल्कुल एक थोड़ा मतलब दो लाइन को सुना देना, तो बीच में काट लेना, कोई चक्कर नहीं।
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो मैं एक कुछ मित्रों को याद करना चाहता हूँ।
0: हाँ याद करिए याद करिए
1: जी। सबसे पहले तो गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूर्ण वर्मा और अविनाश तेली और राम नरेश पंजर, भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, अमल बसुमतारी और अंजलि बसुमतारी और तमाम सुनने वाले श्रोता, इन सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है ओके थैंक यू।
1: ओके जी,
0: धन्यवाद। ओके
1: धन्यवाद
0: आपको भी।
1: धन्यवाद।
0: ओके ओके
1: ओके।
0: तो लिसनर्स का नकु हुनी बोपलों के अलका यकनी कारो कुमार शानू लका वास्ते से फिल्म से इतिहास।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को

0: को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
7: Several key agreements were signed.
8: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: लाइक मेट्रिक टन ऑफ इम्पोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद।

0: कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सू से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heat wave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2-3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. नोटेड फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देव

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।